ए चाय मुबिते दोनें चाय लगोना जानतोस पवालस वाकेने वाकेला कर तांकिल केनी दायु डाटू सिंगोंगान गुमें चाय ने लाकर गरुबुक बस्तरियो हरिलम वाकेला बुयारियन लुमाकु मरिकनंग जगत सर.